प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज, आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे।

ॐ वरसिद्धि विनायकाय नमः। प्रेम सबलो श्री गणेश भगवान की जय। ओम गम।